0: से बताया रे।
1: ए, क्या बताया रे?
0: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे।

0: ए सेटिंग है क्या?
1: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली
0: फेंकता है साला।
1: अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा ही झूठ लगता है यार।